0: नहीं नहीं नहीं नहीं, फिल्मों में लड़की ऐसा नहीं गाती।
1: तो कैसे गाती है?
0: कुछ नाच नखरे से, अदा के साथ, डांस करके।
1: नहीं, मैं ऐसे नहीं गा सकती।

0: experience a musical incarnation. Radio Jagriti 102.7 FM.
1: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
2: Hey, Philip Dinesh Maharaj here wondering what your weekends are like. Are you with friends and family, on the roads, at work? Well, wherever you are, join with me on Radio Jagriti 102.7 FM for the weekend program Salona. Salona brings to you a wonderful selection of music ranging from religious, folk, golden classics and Bollywood hits to keep your company as you enjoy your weekend and prepare for the week ahead. Join me on Radio Jagriti 102.7 FM every Saturday and Sunday from 9 p.m. and Mondays for your cup of Salona, a musical experience to satiate your musical thirst and desires.

चर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणि रंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

ओम हर हर हर महादेव, उमापति महादेव की जय, ओम सतन महान की जय, गणेश भगवान की जय हो। भक्त ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड फॉर आरती, ऑल ऑफ यू उठो, एंड दोज ऑफ यू हु आर स्टैंडिंग एंड सिटिंग अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, प्लीज डू आरती योर माइंड एज वेल, रिसीव योर ब्लेसिंग। Entire world pray to Hanuman Baba and Ganesh Bhagwan today. So please accept your blessings. Imran Bhai, Arati. Raim Haiji, Pradhan Karo.

शीश गुरु सब के हो ना वो शीश। व्यास महाराज, ऑल द डिवाइन डिवाइन बीइंग्स फ्रॉम हेवन, नारद मुनि आदि, द होली वंस, ब्रह्मदेव, ऑल बाउ टू भगवान गणेश, ऑल बाउ टू यू प्रभु जी, प्लीज आई बाउ टू यू एज वेल।

0: गीरी लाले गहत चरण रज गजन वदन गगन मम गधनी निनिधा ससनी गाय गहत चरण रज गज वदन लहत परम पद लक्षे कटट अगन अघतन अघटाय रतत सकल भय भक्षे।
1: प्रभु जी विद इन इंटेलेक्ट विद योर डिवाइन शेल्टर आई प्रेज यू जय जय गिरिजा लाल हु डिवाइन सन गिरिजा माता। प्रभु जी माई टंग माई माइंड माई बॉडी माई ऑल बिलोंग्स टू यू।
0: विघ्न हरण मंगल करण
1: रिमूव ऑल डिफिकल्टीज ऑल इंपेडिमेंट्स प्रभु जी यू ग्रांट ब्लेसिंग्स टू डिवोटीज।
0: विघ्न हरण मंगल करण शरण सखदुदाता रे श्री गणेश पद कमल युग बंदौ बारंबार।
1: भगवान गणेश आई bow to you again and again and again countlessly Prabhuji. My head belongs to lotus like feet Prabhuji.
0: Mangal mein girija suvane pranavu varambar.
1: Prabhuji, you are the first word, your om pranavu. You are the breath, you are the breather, you are the creation behind the creation, the creator himself, hey Bhagwan Ganesh. मंगल में प्लीज ब्लेस मी प्रभु जी।
0: मंगल में गिरिजा सुवने प्रणवहु बारंबारे विघ्न हरण कल्याण कर कर भव सागर पार।
1: प्रभु जी व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड कैरी मी अक्रॉस द भव सागर अक्रॉस द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। भगवान कैरी मी अक्रॉस द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ टू वेयर यू रिजाइड हे गुरुदेव जी।
0: गग मम गग से जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश जय जय गणेश

आप लोग का हो जाए, प्लीज लेट अस ऑल स्टैंड टुगेदर एज दिस इवनिंग वी कलेक्टिवली लिफ्ट आवर वॉइसेस एज वी वेव दैट सेक्रेड लाइट ऑफ भगवान श्री गणेश विद लव एंड डिवोशन विद द माइंड फिक्स्ड एट हिज लोटस लाइट फीट वी ऑल टुगेदर लिफ्ट आवर वॉइसेस इन गणेश आरती.

नमः ॐ सत्यप्रमाय नमः ॐ शुभंगाय नमः ॐ शुभ्रदंथाय नमः ॐ शुभधाय नमः ॐ शुभव्रक्रधाय

वीरावराग्रघाय नमः, ओम कुमारा गुरु वंशाय नमः, ओम कुंजरासुर भंजनाय नमः, ओम वलभवहाय नमः, ओम वरभव गर्भम्भुजंगाय नमः, ओम सुरकलश हस्त

एकदन्तं सर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशं कुशधरं एवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं ध्यायेत् गजाननं एवं तप्त काञ्चन सन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वभरणभूषितं दन्ताक्षमालापरशुं पूर्णमोदकमधारिणीं मोदक असक्त सुन्दर अग्रम एकदा।

कृष्ण भगवान की जय। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्।

फिर से बोला गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति हनुमान की जय, नव दुर्गा माता की जय, प्रेम शक्ति से बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, जय सीताराम जय सीता। सो

in that same posture, we think of that Lord, we chant Om Gam Ganapataye Namaha. Hey Prabhu, Jo Para Para Chiranandamaya Nirvikar Av Sabke Hriday Me Antaryami Aur Rupa Se Stita Gunatita Evam Gunamaya Hai. उन मयूरेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ. ओ लॉर्ड, रिपीट यू अगेन एंड अगेन.